सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहूं झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुट चुके जी एक बार फिर यह खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संतु दे नाल।

0: कमाल दा कैसी यार, यकीन ही नहीं होता।
1: तेनु इधर ते यकीन नहीं होता। तू ए सुन, सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है।
0: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है, वो ते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने, ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते वो ऑयल टैंक भी फ्री च बार कर देंगे, नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने।
1: तेनु इस सब किने पता?
0: क्योंकि मैं भी पिछले साल लगवाया है।
1: अच्छा, वेबसाइट ते नाम की दस्सी सी?
0: saveonenergy.ca/eap।

कोई परफॉर्मेंस देख रहा सी आर्टिस्ट बिल्ला बख्शी, क्या यार आवाज है, बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। मैं ना सच्ची कई आवाजा ने सुन के ना लू कंडे खड़े होंगे आ। बख्शी बिल्ला होना की मैं आवाज सुनी लाइव, वो भी हूँ, क्योंकि गाना जिहड़ा इन्हां दा ना सोने रंगी नहीं सोना पाउण दी की लोड़ सी। काफ़ी चिर हो गया गाने आई नू, जदों मैनी संधू की एल्बम रिलीज हुई सी माई टाइम खरी आई थिंक एल्बम का नाम सी, उहदे च बड़े कमाल दी गीत सी। ते तुसी बख्शी बिल्ला की आवाज सुनो, तुसी आप कहोगे नवी बल्ले यार क्या बात है, कमाल ही कर दिती। सो दो बोल सुनते हैं ते फिर गल्लां बातें कुछ थोड़े नाल करनियां ने अज्ज। जस्ट स्टे ट्यून्ड, ग्रोसरी करनी है फ्रैश फूड सेंटर 12570 कैनेडी रोड कैनेडी ते डूगल दे बिल्कुल कोर्नर ते फ्रैश फूड सेंटर थोड़े लिए हाजिर है। ते तुसी अगर इंडिया जाना हुण सितंबर अक्टूबर नवंबर दे विच इंडिया जाना तां हैगा ही है सारे ने, तुसी इंडिया दीयां टिकटां हुणे लै लो दुआबा ट्रैवल तों 9057967800, दुआबा ट्रैवल, दुआबा ट्रैवल 9057967800। प्राइस तो सब तो वधिया मिलनी मिलनी है, इन्हां दी सर्विस बाकमाल है। कोई फ्लाइट चेंज करनी हुंदी है, कोई लास्ट मोमेंट ते कोई दिक्कत आउंदी है, थोड़े लिए हाजिर ने। कई कंपनियां ने फोन ही चक्कदे फ्लाइट तो बाद, इन्हां नूं तुसी कॉल करोगे, बहुत वधिया सर्विस 9057967800।

0: लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नाउ एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
2: 647-706-6640।
3: पाजी आज घरे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ करे नहीं बन पाउना।
0: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
4: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200 सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
5: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
6: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
7: पहुंचो 5530 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
8: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
6: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
8: 905-459-5533
6: 905-459-5533 ते
8: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
9: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5594-7-835-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ,
4: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ,
3: ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ,
4: ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ,
3: ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ,
4: ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ,
3: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
4: ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ।
5: ਸੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ?
6: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਹੈ,
7: ਮਿੱਟੀ ਚੁਗਦੀ ਫਸਲ ਸੱਚ ਹੈ,
6: ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ।

0: हाँ जी हाँ जी, तो फिर क्या है, तो नो सिंगलेट करना ही पड़ेगा, कोई कोई वो गल नहीं है।
1: क्योंकि मेनू ना मेनू तो पहला पता ही नहीं सी भी इस चीज नो इन्ना कह लो कि बुरा मनिया जाता, क्योंकि अस तो चलो इतने ही रहे हैं, इतने स्कूलिंग की, सो असी तो देखी है चीज़ शुरू तो, बट हुण मैनू ज्यों ज्यों चलो सारे नाल गल्लां बातें करन दा मौका मिलता तो पता लगता कि आप लोग इस चीज़ नू बुरा मानते हैं।
0: हाँ जी, सिर्फ टीयर टू कह रहे हैं, टीयर वन सिटीज जो इंडिया च है, दिल्ली बैंगलोर मुंबई, सिर्फ उत्थे रह रहे ने, तुसी टीयर टू सिटी च भी एज अ लिविंग कपल नहीं रह सकते, तुहानू जगह ही नहीं मिलेगी।
1: अच्छा,
0: पहला पूछ रहे हैं कि तुहाडा स्टेटस की है, तुसी जाओगे किसी भी, तुसी लैंडलॉर्ड कहेगा भी तुहाडा स्टेटस की है, मेडिकल स्टेटस की, ओके तुसी सिंगल हो, ओके ब्याह किया तां ठीक है, अगर तुसी ब्याह नहीं किया तो कहेंगे सॉरी आपां नहीं देंगे।
1: अच्छा, फिर दिंदे नहीं है। चलो ठीक है ब्रदर, बहुत शुक्रिया थोड़ा, थैंक यू। सो नहीं देखो उही तो है ना, भी वो थोड़ा जिम बाई जी ने कहा कि असिमिलेट होना ना टाइम लग जाता। सो नंबर है अपना 905-673-3337 9056733337 ते गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है। बियॉन्ड आयुर्वेद नंबर वन टीम है, किसी ने भी एनक लड़िया ने हंबर वैसट और गोरवे के बिल्कुल कोर्नर से, बियॉन्ड आयुर्वेद रोमी बाई जी, उन्होंने कॉल करो, आई डॉक्टर अवेलेबल ने, डायरेक्ट बिलिंग थोड़ी इंश्योरेंस कंपनीज नूं भी करदे ने, 9057933937 9057933937 बियॉन्ड आई वेयर 5134। हाँ जी
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी,
1: किवें हो जी?
2: मैं कहा जी इटमीन जे तुसीं रह के वेखना, इटमीन तुहाडे कोल चॉइस है भी ये चीज चंगी नहीं है, मैं दूजी चूज कर लूं, जिहनूं पता भी इहना तुहाडा विआह इक ना ही होना, तुहाडे पेरेंट्स ने कर दिता है ना, तुहानूं फिर सैक्रीफाइस करना पैंदा, तुहानूं एडजस्ट भी होना पैंदा है ना, नहीं तुसीं अपनी आदत चेंज ही ना करो, एक बंदा अपनी आदत ना चेंज करो, टेस्टिंग ते लगा रहूंगा भी मैं इतना सैट नहीं होया, चल मैं दूजी लभ लां तीजी लभ लां है ना, पर यह भी विआह करन तों डरदे, इहनूं पता भी कल च फाह पै जांदा भी लिविंग रिलेशन च वधिया जे नहीं निभ नहीं गलबात कोई होगी तो आप पासे हो जाएंगे, सिर्फ साढ़े से कोई क्रेडिट जिदा भी अपना भी डोर्स का कोई ना लगूगा चक्कर है ना, कल कहे मैं विआह करा, मैं पहलो विआया सी ना, इस करके जनता बहुत स्मार्ट हुई है, इधर पे टेस्टिंग करते रहने ना, कोई चॉइस हैगी चल इन्हना नहीं दूजी ना बन जू, दूजी ना तीजी ना, इदा
1: सारी नहीं, पर यह कहड़ा कोई नवी गल है जी, ये तो बहुत चिर तो हमने अज तो 200 साल पहला भी लै लो डेटिंग होंगी सी, एक डेट कर लिया नहीं गल बनी, दूजी नू डेट कर लिया, कई तो सत रिलेशनशिप तो बाद फिर जाके कितने विआह करवाउंदे ने।
2: नहीं इतने वैसटर्न कल्चर है, अपना कल्चर यह है नहीं, साढ़े बहुत बुरा मनते जी गल, कुड़ी को मुंडा भी हो दस भी देवे घर दू भी मेरे तो मुंडा हैगा है ना,
1: अपने लोग फूल राउंड नहीं करते अपने लोग।
2: अच्छा एक मिनट, कठे रहे मुड़के कभी नहीं मगर पसंद नहीं, फिर
1: नहीं फिर की हो गया, हो जाता बहुत बार होंगे,
2: इट मीन सब कुछ उन्हों का विआह कल्चर तो सारा कुछ होया उन्हों ना, तो है ना वो झूठ बात की बोल रहा उन्होंने, कभी अं विआए हैं राइट,
1: चलो जे जे मैं तो ये कह रहे हैं, जे ओह 2 साल रह भी लेंदे आ उन्हें फिर नहीं लगता कि असी कंपैटिबल हैगे, फिर एडी गल की है वड्डी, फिर की हो गया?
2: नहीं गल वड्डी है जी, थोड़ा तो इना 2 साल इना रह लो, 2 साल ओना रह लो, 2 साल ओना रह लो, ये कोई हैगी लाइफ है कोई?
1: चलो ठीक है, नहीं चलो थोड़ा आपका मनना है, चलो नॉट एन इशू, तुसी कोई गलत नहीं है अपने थान से, थोड़ा आपका ओपिनियन है,
2: दो छे ने लैके तुरी फिरे ते हुण कल्ली तुरी फिरदी है ना।
1: चलो ठीक है, नहीं थैंक यू, नहीं तुसी हुणे मैं वैसे तुहानू एग्जाम्पल दे रहा, आपां लगता हुंदा भी ये अनसक्सैसफुल लोगों दीआं करतूतां ने, पर तुसी हुण काइली जेनर लै लो, काइली जेनर ने विआह नहीं सी कराया, उहदे चलो बच्चा हो गया, हुण वो रह रही है अपने नाल टिमथी नाल, ते देखो बिलियनेर लेडी आ, या तो होवे ना भी सिर्फ जिहड़े लफंगे लोग ने उहो इदां करदे, हुण जिहड़े वड्डे वड्डे ने उह करी जांदे आ, क्रिश्चियनो रोनाल्डो ने विआह नहीं सी कराया, उह लिविंग दे विच रह रिहा सीगा अपनी वाइफ नाल, पता नहीं हुण विआह होया उहदा या नहीं, बट चलो गल इह आ कि इट्स अ कॉमन थिंग, मैं नहीं कह रहा कि सारे करो इदां, मैं जस्ट यही कह रहा कि इहनूं इन्ना एक टैबू नहीं मनना चाहिए जिन्ना आपां आई थिंक मन रहे हैं। एरिन मिल्स एक्यूरा नूं सारी याद रखो, एक्यूरा की गड्डी लेनी है, एक्यूरा का एसयूवी लेना, एरिन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला ते करण शर्मा बाई जी नूं याद रखो, नंबर है 9058285800 9058285800।

0: Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबा।

0: నోబెల్ ప్రైజ్
1: रात हमें छड़ दिनी है पर जनाब चले किथे हो
2: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे कर देने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
1: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीडीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
2: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते बड़े ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
3: बंबा गया जिथे जावां मुंडे कहंदे बंबा गया
4: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-7653-4776-5-2340
5: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

लो जी, ये ना दोहे है और मिक्स है ना, कबीर जी दे भी है, रहीम जी दे भी हैगे है, तुलसी दास जी दे भी हैगे है। सो ये ना बड़ी मकबूल हुई सी फिल्म। वो फिल्म दे विच जिवें कॉलेज दे विच कंपटीशन हुंदा है ना, सो दोहयां दा भी केड़ा जेड़ा एक दोहा बोलूगा ते दूजा उहदा आंसर दऊगा। सो बड़ा वधिया ये कंपटीशन सीगा इस फिल्म दे विच। सो कई फिल्मां दे विच इदां जिहड़े रहीम है, कबीर है, तुलसीदास है ना, इन्हां दे दोहे जिहड़े लिते गए आ। पहलां हिंदी फिल्मां च बड़ा हुंदा सी, हुण तां आई थिंक जिहड़ियां कोई नवीं हैगी आ, लगदा तुहानूं किसे च हैगे ऐड किते हुए तां जरूर दस्सियो। पर ये फिल्म बहुत मकबूल हुई सी, उहदे गाने इन्ने जबरदस्त सी, फिल्म भी बहुत जबरदस्त सीगी ते बहुत मशहूर हुई सीगी। ते फिल्म दा नाम जे पता जरूर दस्सियो, ते जिन्हां ने देखी है वो भी जरूर दस सकदे आ, ते बाकी गल्लां बातां आपां होर भी करांगे। ते बड़ी जिहड़े इहदे विच ना इह दोहे सी और जिहड़ी इह फिल्म सीगी, इस नाम तों गाणा जिहड़ा बड़ा ही मशहूर होया सीगा। और जिवें इक गाणिआं दी लेंथ हुंदी आ, हांजी 3 मिंट है, 4 मिंट है, सो इहदे विच लेंथ गाणिआं दी बड़ी सीगी। जे इहनूं वी देखिए आपां, 5 मिंट ते 24 सेकिंड दा इह सारे दोहे इहदे विच लिते गए आ। ते जिहड़ा इहदा मकबूल गीत सीगा ते आवाज़ वी बड़ी कमाल दी है। आवाज़ उस समें जिहड़ा इह सिंगर है ना, इन्हां दियां आवाज़ां उस समें बहुत मकबूलियत ते सीगियां, नंबर वन ते। इक होर वी बड़ी वधिया मूवी आई सीगी जिहड़े इहदे मेल सिंगर, वो उहनां दी शुरुआत उत्थों हुई सीगी। सो जे याद है तां दस्सो जरूर, ते गल्लां बातां आपां करांगे अज तुहाडे नाल, ते नाल दी नाल फिर जिहड़ियां मेन होर गल्लां बातां वो भी तुहाडे तक जरूर करांगे जी शेयर।

0: क्या है, बड़ी तकलीफ हो रही मुझे इन तमाम चीजों से। और स्पोर्ट्स की जो आप एज की बात कर रहे हैं, वो चाहे वो बंदा 41 का हो या 61 का हो, खेलने के लायक है या नहीं है? इज ही एबल टू प्ले और नॉट? वेरी वेल, ही वॉज वेरी गुड पर्सनैलिटी। मैं बोल रहा हूँ उसको, उस शख्स को तो लोग एतराज इसलिए करते, जैसे आपने कहा क्रिकेट में कपिल देव के पीछे लग गए थे एक जमाने में,
1: ये
0: यार कपिल को रिटायर ले ले।
1: जो ये अपने और भी हैं कई, जैसे रवि शास्त्री था उसको भी कहने लग गए,
0: रवि शास्त्री के पीछे लग गए, सुनील गावस्कर के पीछे लग गए थे,
1: बिल्कुल ये
0: लाला अमरनाथ के पीछे लगे थे, मुझे याद है अच्छी तरीके से। सिद्धू जो थे वो अपने क्या नाम था उनका, बेहतरीन बॉलर थे, स्पिनर थे, नवजोत, उनके पीछे लग गए और भी कई लोगों के। तो मेरा मकसद बोलने का ये है कि हर बंदे की अपनी एक फिजिकल रेसिस्टेंस होती है। मेरी बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे अजहरुद्दीन के साथ, तो किसी बात में, बहुत पुरानी बात 96 की बात बता रहा हूँ, एक सेकंड और लूंगा, प्रोग्राम में तवालत होती, तवालत बहुत प्रोलॉन्ग होता बातचीत, वो ये कि सन एंड शाइन होटल में ठहरे थे बॉम्बे में, वो था उनका ट्रॉफी वोफी क्या होता है वो बकाड़िया, कौन सा स्टेडियम है बॉम्बे का। तो हमारे कजन से बड़ी करीबी दोस्ती थी, साथ में पढ़े दोनों स्कूल में हैदराबाद में। तो उन्होंने कहा यार अजहर से मिलना है, मैंने कहा चलो, मैं दुबई से आया हुआ था। अब मिलने के लिए गया, आप यकीन मानिए 2.5 घंटे ठहर गया वो पार्किंग में। अरे मेरे तो टांगा जवाब दे दिए। मैं बोला भाई बैठ के बात करेंगे, बोले नहीं खड़े रहेंगे। तो आप सोचिए, कंपैरिजन कर सकते हैं आप, अजहरुद्दीन का स्पोर्ट्समैन एथलीट है वो, फील्डर जबरदस्त था, उन्हें 2.5 घंटे क्या 6 घंटे ठहर जाता उन्हें, हम थोड़ी ठहर सकते। जरा सोचिए पॉइंट को आप। भाई मेरे कजन की भी, वो भी ऊंचे पूरे पहलवान जैसे, वो बोले यार मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया, ये बंदा टस से मस नहीं हुआ। अल्लाह भाई कोई कंपैरिजन है यार उसका, वो स्पोर्ट्समैन है, हम थोड़ी स्पोर्ट्समैन है।
1: बिल्कुल, थैंक यू सर,
0: तवज्जो देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वर्क देने के लिए।
1: जी जी, थैंक यू, थैंक यू। देखो सचिन तेंदुलकर, वो भी तो देखो किन्ना वधिया खेलदे, उन्होंने भी कह वो, फिर वही गल हो जाती कि वो थोड़ा जा ना बंदा सोचता भी नहीं, मैनू पता नहीं लाइक नहीं करते कि किवें है, तो फिर वो छड्ड देंदे। तो लो जी बिल्कुल, देखो हुण कल US ते बेलजियम का जिहड़ा मैच होया, बेलजियम ने 4 गोल किए, मैनू नहीं लगता जिन्हें हुण तक अपने कोई प्रीवियसली जिन्हें भी मैच होए उन्होंने 4 गोल होए है किसी होर टीम ने किए। सो US जिहड़ा सिर्फ 1 गोल कर सकया, बेलजियम ने 4 किए। उंज गेम बड़ी जबरदस्त सीगी, बहुत वधिया जिहड़े प्ले किया सारे प्लेयर्स ने, पर जिथे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टंग अड़ाई है ना, इनफ्लुएंस किया। देखो कल मैं जाते जाते थोनों कहा सीगा भी देखो जिहड़े US प्रेजिडेंट, क्योंकि वह खबर मैनू उदों ही पता लगी, ब्रेकिंग न्यूज सीगी भी हाँ जी US प्रेजिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जिहड़े फीफा के प्रेजिडेंट है जिनानी इनफेंटिनो, सो उन्होंने कहा भी इनू रैड कार्ड दिता जिहड़े US दे प्लेयर नू, जबकि उही गल है भी उन्हूं वो खेल नहीं सकता इस मैच दे विच। ते उन्होंने की किता के भी भाई इनू सस्पेंड कर दो, जिहड़ा इन्हां तुसीं रैड कार्ड दिता इनू खेलण दो। ते देख लो जिहड़े प्रेजिडेंट हैगे फीफा वर्ल्ड कप दे, उन्होंने भी की किता, उन्होंने भी मन गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप दे कहे तो, जबकि उन्होंने चाहिए सी भी नहीं इदा नहीं जी, जिहड़ी गेम है वह गेम है, इदा तो उ है जिहड़े भी होर कंट्रियां किसी येलो कार्ड उन्होंने दिता है तो किसी नूं रैड दिता है, तो किन्नियां नूं मिले है, कहते जिन्हें इस बार रैड कार्ड मिले है पिछले समय दे विच नहीं इन्ने मिले है। पहला जे आपां गल करिए ना 2018 ते 2022 दे विच सिर्फ कहते 4 रैड कार्ड जिहड़े इशू होए सी, सो इस बार 13 रैड कार्ड जिहड़े है वह हुण तक इशू हो चुके हैं, तो हाले तो मैच चल रहे हैं, यू नैवर नो कि अगे भी होर किसी नूं मिले। सो देख लो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने गेम नूं भी इन्फ्लुएंस करता भी अपनी राजनीति विच वाड़ दित्ती, सो इहदा मतलब है कि एक फेयर जिहड़ी फेयर गेम होनी चाहीदी उह तां ना होई, ते फिर भी रिजल्ट की आया, US तां फिर भी हार गया। ते हुण जिहड़ियां होस्ट कर रहियां सी जी टीमां तिन्नों, पहलां कैनेडा बाहर हो गया, फिर मैक्सीको बाहर हो गया, हुण US भी बाहर हो गया। सो जिन्नियां भी तिन्नों इह होस्ट सीगे, सो उन्हां दियां जिहड़ियां टीम्स हैगियां जी वो हो गईयां बाहर। हुण देखदे आं वर्ल्ड कप दे अगले मैच दे विच की होना, अज हुण 12 बजे हैगा अर्जेंटीना ते इजिप्ट दे विच, सो ये भी बड़ी कमाल दी, इजिप्ट दी गेम भी तुसीं देखी होनी बड़े कमाल दी है, ते इधर तां फिर मैसी साहब है। ते दूजा मैच होना 4 बजे स्विट्जरलैंड ते कोलंबिया दे विचकार, सो बाकी देखदे आं। अच्छा इहदे विच जिहड़े कार्ड इह दिंदे आ इह किन्नी तरहां दे हुंदे आ, जिहड़े ये कार्ड दिंदे आ ये किन्नी तरह के होंदे आ ते क्यों?

0: 8877sofastudio.ca. थैंक यू जी।
1: मैं नवा घर लिया है, तेनु पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, एक भाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
2: ओ जी ए विच समझण वाली केड़ी गल है, सारे कमां लई इक्को जगह, चलो मिसेस अगा स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इहदे प्राइस अते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा, तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने, मिसेस अगा अप्लायंस जंक्शन, कॉल 905-450-0054 905-450-0054।
3: लो जी दीपांश दा नंबर भी नोट कर लो, दीपांश कोल बहुत वधिया इंडिया नू जान दे लई टिकटां अवेलेबल है, एयर फेयर कमाल दे, चाहे इकोनॉमी क्लास दे लेने हैं, बिजनेस क्लास दे लेने हैं, टौर नाल जाओ अपना घूमो फिरो, क्योंकि बच्चों नू छुट्टियां है ना हुण, वैसे भी अगे आउण वाले दसंबर तक आपां कदे भी किते जाना हुंदा, चाहे टूर ट्रिप करना, चाहे तुसी बैक होम जाना है, टोरोंटो टू दिल्ली दीआं टिकटां जिहड़ियां बड़ियां जबरदस्त रेट दे उपर पहुंचियां जी इहनां दे कोल, दीपांश कहिंदे आ नंबर दे दो बस तुसी ते बाकी कम मेरा, ते लो जी तुसी दुआबा टूर्स एंड ट्रैवल्स दा लो नंबर, दीपांश नू करो कॉल, ते इंडिया नू तुसी जाना है, ते टिकटां जिहड़ियां बहुत कमाल दा रेट, गजब जिन्हों कहते हैं वह रेट थानू मिल रहा है, 905-673-905-673-1400 ते गलबात की जा सकती है। तो बिल्कुल जी फीफा दे प्रेजिडेंट है जियानी इनफेंटिनो जिहड़ा इन्होंने रैड कार्ड बिल्कुल वो सस्पेंड करके उन्होंने खिला दिता, वो बड़ी आलोचना हो रही है, तो रिजाइन करन दी गलबात इन्हों कही जा रही भी रिजाइन करो, तो बाकी देखते हैं हूँ की हुंदा की नहीं हुंदा, तो हुण तक कहिंदे 13 रैड कार्ड जिहड़े मिल चुके हैं, तो यदा मतलब है जिहड़े ये 13वां हो गया, तो जिहड़े 12 उन्होंने भी खेलन देंदे है ना, उन्होंने क्यों नहीं खेलन दे रहे, सो उन्होंने भी अपनी जिवें कहिंदे आ वी
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Don Platinum, the better grease getter.
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900
1: यार इना इंश्योरेंस ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
2: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
3: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
2: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473300
3: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
4: आप पंजाबी आ गए
5: आईपीएल चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
6: केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करदा आ रहा है केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नू फोन करो
7: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी आल्सो शिप कार्स वी आल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
8: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
9: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीजा के मर्दा के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
10: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
11: Toronto's number one station.

तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तुम, मेरी पहली और आखिरी वफा है तुम। चाह है तुझे चाह से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की मेरी जान। इन

0: फरमाइश की थी है बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सिंह जी, कैसे गीत की आपने फरमाइश की है सुबह सुबह? तो गीत तो ये है ही बड़ा प्यारा है, किन्ने वधिया गीत दी तुसी सवेरे सवेरे चोन की थी है, और वाकई गीत बड़ा वधिया। सनम तेरी कसम, ओ मेरी कसम, ओ सनम सनम तेरी कसम, जैसे मैं जरूरी हूं तेरी खुशी के लिए, तू जरूरी है मेरी जान सिंह हरजीत की जिंदगी के लिए। पंजाबी वैसा 905-673-3337 आपकी और हमारी बात स्टूडियो में हो सकती है। 905-673-3337 स्टूडियो का नंबर है। एचके मूवर्स तुहाडे वास्ते हाजिर है, तुसी अपनियां गड्डियां मूव करवाउणियां कैलगरी, एडमिंटन, विनिपेग, ओटवा, मॉन्ट्रियल तो चला के लियाउण दी लोड़ नहीं, किलोमीटर बहुत पै जाने हैं। जे 500-700 डॉलर लगता भाई, तेल भी फूकना गड्डी दे नाले, दिहाड़ी भी भरनी अपनी, ठीक है। तो जे गड्डियां तुहाडियां उत्थों मूव हो गए इत्थे आ यार, 500-700 जे होर की चाहिए, नाले किलोमीटर नहीं पैने, नाले गड्डी सेफ, ट्रेलर च गड्डी आनी है, कोई एक्सट्रा खर्चा नहीं, आराम ने इन्हां दे वेयर हाउस तों गड्डी पिक करो ब्रैम्पटन तों, ठीक है जी। एच के मूवर वाले कहंदे आ जे तुसी मूव हो रहे टोरंटो तुहानूं महंगा लगता, जे तुसी कैलगरी, एडमिंटन, विनिपेग जा रहे हैं, मॉन्ट्रियल, ओटवा जा रहे हैं, ते भाई तुहाडा समान सारा लै जाणगे इत्थों ट्रक दे विच, पर तुहानूं नहीं ना जा सकदे नाल, इह तुसी पता कर लो, मे बी तुहानूं वी नाल लै जाण, मैनूं उहदे बारे पता नहीं, पर डिटेल्स नहीं है मेरे को इस गल दी, समान दी डिटेल्स तां है, तुहाडा समान तां सारा लै जाणगे। जे किसे कोई मोटरसाइकल पे आ, कई वारी कोई बंदा सपोज करो तुसीं कैलगरी तों आए आ, तुहाडा मोटरसाइकल उत्थे पिया, जां तुसीं वैनकूवर तों आए आ मूव हो गए टोरंटो, जां तुसीं टोरंटो तों वैनकूवर जाणा, अपने परिवार तुहाडे उत्थे रहिंदे आ, कोई तुहाडे कोल मोटरसाइकल है, गड्डी है, कोई भी है, सारा दे सारा समान तुहाडा उत्थे छड्ड देणगे, उत्थों इत्थे लै आणगे, ठीक है भाई। नंबर नोट कर लो एच के मूवर्स वाले दा, 416-524-6704 ते कॉल की जा सकती है, 416-524-6704 ते कॉल जल्दी जल्दी जल्दी तो पहला कर लियो, क्योंकि ये बड़े बंदे है, ये बड़े कमाल दे बंदे आ, बड़े प्रोफेशनल बंदे आ, वड्डे वड्डे ट्रेलर इन्हां दे कोल आ। एच के मूवर्स 416-524-6704, बड़े पुराने साडे मित्र हरमिंदर राणी, और जदों असीं रेडियो प्रोग्राम शुरू कीता सी उदों वी इन्हां दी ऐड चलदी सी। 416-524-6704 ते जल्दी जल्दी कॉल कर लियो।
1: अज दे समें विच हर मापे दी इहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच वी अग्गे होवे ते अपनियां जड़ां, अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल वी जुड़िया रहे। इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोबिंद सरवर स्कूल। साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओ है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान, दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे। बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोबिंद सरवर स्कूल। गोबिंद सरवर ब्रैम्पटन दी नवीं लोकेशन आ रही है, कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट। जेके तो ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 905-458-6222।
0: नंबर कर लो भाई नोट, ये बहुत जरूरी नंबर है, बच्चियां जिन्होंने छुट्टियां और बच्चे पढ़नगे पढ़ाई करनगे।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
2: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
1: इंडिया दी टिकटा चाहिदिया सी
2: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
1: चार टिकटा दिल्ली दिया ते दो अमृतसर दिया मिल जानगियां
2: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदिया ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
1: पर उसे मन सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: 32-55-80 98
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
3: 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 कोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
0: This is

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/EAP
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: संसार दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियों तक विरसे दी खुशबू पहुंचाउंदा ए है वतनों दूर रेडियो। दिस इज वतनों दूर रेडियो।
4: वतनों दूर रेडियो विच तुहाडा सारिआं दा दोस्त सुखी निजर तुहाडा सारिआं दा सत्कार करदा है ते सिजदा करदा है कनेडा विच मेहनत करके तरक्की कर रहे सारे परिवारां दा जिन्होंने वतन तो दूर आके इत्थे खुशहाली दे महल बनाए ने, ते वतनों दूर सिजदा करदा है उना सारे सिरड़ी इंसानां दा जिन्होंने इस वतन दीआं तरक्कियां दीआं कहानियां लिखियां ने। वतनों दूर रेडियो सिर चकाउंदा है उना सारे दोस्तां नूं जिन्हां अपनी कामयाबी दे नाल इत्थों दी धरती ते इत्थों दे लोकां नूं दस्सिआ है कि साडी शान वखरी। वतनों दूर हुण कैनेडा विच वसदे पंजाबियों लई पंजाबी संगीत, पंजाबी जवान ते पंजाबी विरसे दी खुशबू पहचान लई लैके आया है वतनों दूर रेडियो।
3: दिस इज वतनों दूर रेडियो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: आज
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
6: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com। और कोई सेवा
7: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
8: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
7: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
9: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसां विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
10: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sunu chahide ne. Jan to see visa services di pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
11: ਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੜਦਾ ਸੀ, ਓ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਮਰਦਾ ਸੀ।
12: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा तो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गब्बरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार ना दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू

0: फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ले चांदी दे कड़े, चांदी दी चेन, चांदी दी ब्रेसलेट।
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: घोर एंड अवनीजर दे इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजे दे विच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: ओ आज तां कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदों ही बनू जदों नवे अप्लायंसेस आउणगे। मैं गया लाइन इक गल, उस वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूहरे ले जा खड़ी करती।
3: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट, जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888।
4: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना हो भी।
5: बस इन्नी गल हो कर।

0: जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले। लेनियां हो या चार बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ वी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसीसागा कॉल 9056781200
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca
4: सही सुनिया बई जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज नॉनवेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे तो उत्ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, उत्ते तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
4: तुहाडियां कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ आटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन। हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी है, सेफ्टी इंस्पेक्शन, फ्री एमिशन टेस्ट, न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ, रस्ट प्रूफिंग दा काम, ऑयल चेंज, ब्रेक जॉब, ट्रांसमिशन, इंजन दा कोई भी काम होवे, अज ही अपनी कार नू लेके आओ हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े नंबर 91 हेली रोड और होम डिपो दे नाल। अज ही कॉल करो परमिंदर सिंह होरां नू 905-857-7596, 905-857-7596, ANJ Auto Repair, जेड़े के बोल्टन अते ब्रेम

0: First year second mortgage or refinance करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: टीम से दुला के आयने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जे दे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच्ड ते डिटैच कर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल two-story freehold townhouses but the backyard the unfinished basement and all sirf $7 lakh di range de vich in the 700s bahut jald aa rahe ne semi detached kar $8 lakh di range de vich in the 800s releasing very soon sab to khas double car garage wale but de detached kar sirf $9 lakh di range de vich in the 900s releasing very soon public release to pehla best lot end lot corner lot de layi jald to jald sampark karo at 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 Kaldan Shahar de vich the Gore Road and Mayfield Road te 2500 to vi jyada ghar taiyar ho rahe ne 2027 and 2028 de vich call team Sidhu 416-302-0016 416-302-0016

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478 रॉयल ऑटो सेंटर ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 647-504-1557